गीत संगीत को बजार में सुपा देउराले म्यूजिक प्राले सगौरव प्रस्तुत गर्दछ गीत संग्रह आंसू पिउछु बरु। यमन खनाल को म्यूजिक एरेंज में प्रेम ओली को उत्कृष्ट लय, भूपेन्द्र बीएम को शब्द सिर्जना में अमित बाबू रोका र पूर्णकला विषय को सुमधुर स्वर में सुपा देउराले म्यूजिक प्राले मार्फत सर्वत्र बजार में उपलब्ध छ। उत्पादक सुपा देउराली म्यूजिक प्राली, प्रबंध निर्देशक यमन खनाल, 9849404000।

0: उद्धव कार्की र पूर्ण कला विशी
1: लय तथा शब्द उद्धव कार्की प्रकाश पुरी
0: शिवपुरी म्युजिक प्राली मार्फत उपलब्ध छ।

Willing Go Festivity Offer. अब पाउन होस एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेट नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेटअप बॉक्स मात्र रूप 1200 प्रति महीना में सर्तहरू लागू होने छिटो बनेगा यह Willing Go।

0: यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा दिउँसोको 4 बज्यो।
1: यस टाइम चेकका प्रायोजक दीर्घायु हस्पिटल प्राली दिलोतमा 5
2: एलर्जी, छाला रोग का समस्या, पुराना रुगा खोकी, टन्सिलाइटिस, अनिद्रा, माइग्रेन, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, हाथ खुट्टा घुड़ा कुहना पोल्ने वा झमझमाउने, हड्डी खिएर, हाड जोड्ने मांसपेशी वा बाथ को दुखाई, यूरिक एसिड बढेको, महिनावारी को दुखाई, यौन समस्या, बाँझोपन, मोटोपन, अरुचि, मधुमेह तथा

रोती को आकर से दिल गई हो मेरे बातों का सुनाई खत्म के जूनी जूनी मातम गई हो घर चूमा मंजूला उनको बाहर का सुनका मंजूला भेटी को आकर से दिल गई हो मेरे बातों का सुनाई खत्म के।

जलजला ट्राइब चेक। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बेलुकीको

0: ने 7:40 के चाहियो रायो भन्दा चाहिने
1: जो जिन्दगानीमा Sincerely, it's your own Damoli FM 94.2 MHz.